0: निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेट फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रिम शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मेरे को सशक्त बना रहा है।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कुनू राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के स्थापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मैरिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्दे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: આકાશવાણીનું આ ભુજ કેન્દ્ર છે, પ્રસ્તુત છે વિચાર બિંદુ, વિષય છે શૈલવાન, પઠન છે જિજ્ઞા મહેતાનું।
2: વિચાર બિંદુ।

सेना के साथ विभीषण और हनुमान के युद्ध का वर्णन है। रावण को विभीषण पर शक्तिबाण छोड़ते हुए देख श्री राम ने उन्हें पीछे हटाकर उसे अपनी छाती पर ले लिया। क्षण भर को उन्हें मूर्छित होता देख विभीषण ने दुगने क्रोध के साथ गदा प्रहार से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दसों मुखों से रक्त प्रवाहित होने लगा। दोनों भाई फिर मल्ल युद्ध में भिड़ गए। विभीषण को थकते देखकर हनुमान बीच में आ कूदे। उन्होंने रावण के रथ घोड़ों तथा सारथी सबका संहार कर दिया। लेकिन मायावी रावण ने तब अन्य युक्ति अपनाई। दोनों वीर पृथ्वी से आकाश तक एक दूसरे से गुंथ गए।

0: düşük uç. Em, Akashvani. Sampradi Vardaha Shru Yantam, Pravachika Sadhana Sharma. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थाते तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस देवगिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रवेष्ट भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
1: Yeah.

है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टार्थ फ्रिगेट INS दुनियागिरी, संशोधक

0: वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। यह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22,00,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप बी मुकाबले में भारत ने 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मैरिजोन कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सांड्रा मुश्तबा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज अ स्ट्रांग मैरिटाइम कैपेबिलिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning 3 indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said, India does not want to remain only a buyer country in the defense sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built stealth frigate Bhumagiri, survey vessel Sanshodhak, and anti-submarine warfare shallow water craft Abhay yesterday. Mr. Modi said India's journey from Omnis Vikrant to this date is not just about new warships, but towards

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार कलम मुकुल वाचे छे मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूए कुनो राष्ट्रीय उद्यान की मुलाकात ली, प्रोजेक्ट चित्ता की प्रगति की समीक्षा करी। ब्रिक्स सभ्य देशों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बे दिवसीय बैठक में आज थी नवी दिल्ली में प्रारंभ थशे। ईरान और अमेरिका वच्चे स्विट्जरलैंड में बर्जिंगस्टॉक में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वाटाघाटो। संशोधन और अध्यापन क्षेत्र में कारकिर्दि बनाव मांगता विद्यार्थियों की यूजीसी नेट की परीक्षा आज थी आरंभ थशे। भारत अंतिम एफआईएच प्रो लीग हॉकी मैच में नेदरलैंड्स ने 3-2 थी हराव्यु। समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूए गई मध्यप्रदेश कूनो राष्ट्रीय उद्यान की मुलाकात ली,

जॉइस थानेकॉन गत 24 कलेक् में भूस्खलन में वृद्धि का तापमान आक्रमण रहे न्यूनतम 37.4 अंश सेल्सियस न्यूनतम 28.2 अंश सेल्सियस वातावरण देखने को मिला गई कल सांझे 5:47 टका और सवेरे 8:30 35 नोंधायो स्थानीय कमान जानकारी पूरी थी आकाशवाणी भूस्खलन हमें समाचार अपाशे

ముఖ్య సమాచారం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కహా మజబూత్ సముద్ర క్షమతా కిసీ భీ దేశ్ కా ఆర్థిక ఔర్ రణనీతిక ప్రభావ మే యే నయా ఖేల్ ఔర్ భారత్ ఇస్ ఓర్ అగ్రసర్ హై. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर है. कीपा परियोजना की समीक्षा की. भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी. अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति. और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रोटर अनुचार के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्र क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. कोलकाता में कल

0: सौदे को अप्रैल को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए मैदान नहीं बन सकती। मेरी शक्ति के सामर्थ्य के पैदा मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रम से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।

0: उत्सव मनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुल्लू नेशनल पार्क में सफाई की। इसके बाद वे कुल्लू के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नामिबिया से लाए गए 5 चीतों को कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण

0: चंद्रकांत मांगे, प्रभात गोयल, आकाशवाणी न्यूज भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं ब्रिटनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @NewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप GRF सहायक प्रोफेसर के पद और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UGC पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22,00,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UGC पुनः परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% सभी आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोह में से एक बताया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित

0: संघ के अभियान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
1: लेक ह्यूस्टन के निकट बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेल्स ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का

द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत।

विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है।

0: Сега проблема е да се налоги, публик спикър към управлено 30 годината и Рузвар Лужина. Жуган Гали Рузвар Кейм Сепнер, поричаш че е посарит крига, към чари бъвшен и висен бачинде. Апар ген лайо тупу лендо бушна горна, из поричарча ми бхаг линги. Поризати ми бхарат ми към вата денне, ФАС Провли, Кепнентен Хоблини, Нидерландско тим до сега кършен Дарджит Пелки, Бхарат ки уси Джубрат Синг Абишек, और राजेंद्र सिंह गोल की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाकुंभ, कुंभ और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योग में हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई न हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में निर्णायक है।

संघ कार्यक्रम हलो करियूं घर बाबेनू हलो करियूं घर में तां मिल जाओ था अने शिक्षण साहित्य स्थापत्य ओठा चोठा कहवतम पर्यंदू अने भारत जी गाल करता हूं था अने आज गाल करनी है साहित्य जी हाँ कोई पण साहित्यकार ए साहित्य सर्जन करे ए मात्र शब्द जी आराधना ने पंज जीवन चरित्र जी आराधना है पंज वांचन जी आराधना है पंज श्रवण जी आराधना है अने सौथी अगत्य जो है पंज अनुभव जी आराधना है लेखक के कवि जकी पण दिसे तो सीखे तो समझे तो ए शब्द ने वणाक लेन होता रहे तो ए जो को समझे आए कि बाके समझे जो प्रयत्न करे तो नरसिंह मेहता की याद करो तो नरसिंह मेहता खूब सरस प्रभातिया गई है लेकिन नरसिंह मेहता पाके सिखाई है सवार जो उठे ने भगवान की याद करे जाए गंगा सती की याद करूं

0: भाई तेरा सांभळ्यू आपने दरियामां होईए तो आ इंटरसेप्टर बोट आपणी अने देशनी रक्षा करे छे।
1: गुजरात राज्यना दरिया किनारे कुल 27 इंटरसेप्टर बोट आपणी सुरक्षा माटे दरियामां सतत पेट्रोलिंग करे छे अने आपणे पण तपास दरमियान जरूरी दस्तावेजो अने साची माहिती आपी तमने संपूर्ण सहकार करवो जोईए। आपणने दरियामां के किनारे अजाणी बोट व्यक्ति के शंकास्पद हिलचाल दिखाए तो तरत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान करवी जोईए। आपणी सजगता अने तकेदारी आपणी दरियाई सुरक्षानी खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

CIET प्रस्तुत करता है सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, लिखते हैं आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडे जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा आशा सारवा नीरज नीलेश अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमुरिया अजय देव तुषार देव डॉली देवी पूजा पुष्कर लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तमुरिया तेजस्वी और गौरव तमुरिया जी का। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निहत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। अरे बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है लोकटक झील में द्वीप मिट्टी घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुंगी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन साइबेरिया रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800044559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा के स्वर मालिका आरोह अवरोह थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं संगीत विद्यार्थी और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

ग्राहक सिंदूरा राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी फारसी हुई है। इसे राग सैंडवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज्य स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औरव संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी क है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

सिंधुरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंधुरा की स्वर मालिका की स्थिति।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओ, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: तो यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहाँ बहुत जंगल है। एक बार उन जंगलों में आग लग

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया, भालू को उसने बंद कर दिया

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहाँ भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूम रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए। अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: आतो प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारण करने वाले आकाशवाणी ना भुज केंद्र पर थे।
4: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान की मुलाकात ली, प्रोजेक्ट चित्ता की प्रगति की समीक्षा करी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की वैश्विक उजवणी में उत्साहभेर जोड़वा बदल विश्वभर में लोगों का आभार व्यक्त करो। ब्रिक्स सभ्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक में आज थी नई दिल्ली में प्रारंभ थशे। ईरान ने अमेरिका वच्चे स्विट्जरलैंड में बाल्टिस्टान स्टॉक में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वाटाघाटो। संशोधन और अध्यापन क्षेत्र में कारकिर्दी बनावा मांगता विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट की परीक्षा आज से आरंभ। सीबीएसई धोरण 12 में गुण चकासणी और पुनः मूल्यांकन परिणामों जाहिर करने शुरू कर। गांधीनगर शहर ने 4 मार्ग ने मॉडल स्मार्ट रोड तरीके विकसावा 50 करोड़ रूपया की सरकारे फाड़वनी करी। नागरिकों की फरियादों स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आज निवारण करते। गांधीनगर स्थित गुजरात लोकभवन खाते राज्यपाल आचार्य देवव्रत मार्गदर्शन हेठ गुजरात लोकभवन ने इतिहास में प्रथम वक्त रामकथा आयोजन करायु। मुंद्रा मांडवी नारायण सरोवर जखौ मानकुआ खावड़ा नखत्राणा और निरोणा में सरकारी जमीनों पर वर्षो गैरकायदेसर दबाण दूर करने की कामगी हाथ धराई। दयापर रवापर और मानकुआ में ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस अनुसंधाने पुलिस कार्यवाही अंतर्गत मादक पदार्थ साथ शख्सों ने झड़पी पड़ा। जिले में 1416 छात्रों अपी नीट की पुनः परीक्षा। विश्व योग दिवस की सामूहिक उजवणी अंतर्गत भुज में स्मृतिवन खाते राज्यमंत्री त्रिकमभाई छंडा की उपस्थिति में जिला कक्षा की उजवणी तो 10 तालुका कक्षा कार्यक्रमों योजाया। पिंगलेश्वर बीच खाते सांसद विनोद चावड़ा की उपस्थिति में योग दिवस उजवायो। पीटीसी अभ्यासक्रम में फाइनल वर्ष में परिणाम जाहिर। राज्य में परिणाम 87.49%, मुंद्रा कॉलेज 97.75% साथ झड़की। आगामी 7 दिवस दरमियान राज्य में छूटा छवाया वरसाद की आगाही। મહિલા ક્રિકેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ આઈસીસી T20 વિશ્વ કપની ગ્રુપ એ મેચમાં ભારતને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. હવે પછીના મુખ્ય સમાચાર આપ સાંજે 5:10 સાંભળી શકશો.

0: एपिसोड सब
1: पर ये सारा भविष्य में प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित शाला प्रवेश उत्सव में महत्तम निर्धार साथ आगे बढ़ी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल 23, 24 और 25 जून समग्र राज्य में योजा शाला प्रवेश।

0: उमारा वाला सागर खेलू भाईओ दरियो खेलवा जाओ ए पहला हवामान विभाग ने आ रही अने दरियानी स्थिति ने हमेशा ध्यान रखो। फिशरीज विभाग द्वारा हवामान खराब होवानी चेतवनी हो तो दरिये जवानू टाळो अने जो दरिया में हो तो तुरत ज पाछा आवी जाओ। आ चेतवनी नी अवगणना ना किस्सा में बोट डूबवाना बनाव नोंधायेल छे अने कोई संदिग्ध व्यक्ति के बोट माछीमारी करतुं देखाय तो तुरत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जाण करो। हवामान ने समझी बनो सुरक्षित खेवाया। आपनी सजगता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: वाह जीनोमी जी आ घर ना थोड़ा नियमो छे जेम के अहिया कैश नी परंपरा नथी
2: तो
1: लेवर देवर ते अमे डिजिटल पेमेंट करिए छे
2: तो
1: जेम के यूपीआई थी।
2: अच्छा
1: अने हाँ सांभळ हजु एक नियम छे।
2: कयो नियम मम्मी जी?
1: तारू मोडू जो ने लागो पर यूपीआई थी मिलशे।
2: हमें पढ़ने मम्मी जी
0: भारत करे छे डिजिटल चुकवणी
1: दरेक लेवर देवर हवे छे सेल्ली।

0: विश उत्सव पंजाब जेवी वार
1: पर सारा भविष्य में प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित शाला प्रवेश उत्सव ने मक्कम निर्धार साथ आगे बढ़ी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल 23, 24 और 25 जून समग्र राज्य में योजा शाला प्रवेश उत्सव इन्हें तुम्हारा बाड़कों मानव जीवो और भगवानी तक आप

0: गरीब भाई क्या सांभू आपने दरिया में हो तो आ इंटरसेप्टर बोट अपनी देश की रक्षा करे छे।
1: गुजरात राज्य न दरिया किनारे कुल 27 इंटरसेप्टर बोट अपनी सुरक्षा माटे दरिया में सतत पेट्रोलिंग करे छे। अने आपने पण तपास दरमियान जरूरी दस्तावेजो अने साची माहिती आपी तमने संपूर्ण सहकार करवो जोईए। आपने दरिया में के किनारे अजाणी बोट व्यक्ति के शंकास्पद हिलचाल देखाय तो तरत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जाण करवी जोईए। आपनी सजगता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: Leonardo, tengo que decir que estamos en las carnes suermas.

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रस्तुत कर रहा कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में प्रथम प्रस्तुति एलओसी कारगिल फिल्म गीत आप समझो श्रेया घोषाल और निगम स्वर अनु मलिक संगीत जावेद अख्तर शब्दांकन।

समस्या है घर में आप संग रहे तो फिल्म बनाव तो होटल हिंदी फिल्म संगीत नो कार्यक्रम समाप्त है। प्रसारण आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र पर करवामां आव्युं। हवे प्रस्तुत है

संगम वॉर से आप सब रहे थे। गैर फिल्मी हिंदी गीतों कार्यक्रम समाप्त हो गया। प्रसारण आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर कर बपोर भारत जी रहे। सौ अत्यार मुख्य समाचार।

0: Ce sandwich-ul vă trebuie hindi masama ceară.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया।

तुम्हारा धोखे भाई रात सजमन राजनीति रात जी मारा मरण वीण मारा घर मात भूति पग नवरात जी मारा मरण वीण मारा घर मात भूति पग नव

0: जय भारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भूज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रूपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रूपए बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रूपए की वृद्धि की गयी है। चंदीपन दास गुप्ता के साथ काश्मीर महार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में है, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई है। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
3: मैं मानता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले के कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य कार्यों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकोर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल कार्यकाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

की बात हम जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की हम कहें विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार हिमाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं यवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बटोर में मंगोलिया के विदेश मंत्री दीक्षित से बहुमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एमवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रूपये बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रूपये से अधिक के अनुपूरक मांगे पेश किए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल मार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीता पवार और अक्षय कार्डिली को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक

0: प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बरन से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बरन ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी शौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग आ गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज के लिए एक रोमांचक मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that the changes that have taken place over the past 12 years have succeeded in strengthening people's faith in governance and administration. He added that it also played a crucial role in making the lives of millions of citizens more convenient, secure and dignified through public welfare schemes. The Prime Minister said this while sharing an article written by Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, in a social media post. Mr. Modi further said that public trust is the greatest asset of good governance. The article written by Mr. Goyal highlights the journey of good governance, public welfare and the positive changes in the lives of the poor during the 12 years of the central government under the leadership of Prime Minister Modi. The BJP-led West Bengal government today presented its first full budget for 2026-27 with a strong focus on social welfare, infrastructure development and employment generation. The budget also announces several women-centric initiatives, presenting a deficit budget of 6,070 crore rupees. Finance Minister Swapan Das Gupta described it as a roadmap for building a developed Bengal. He said the state's outstanding debt has crossed 8 lakh crore rupees, making financial discipline a key priority. The budget proposes recruitment for 1 lakh vacant government posts, including 20,000 positions in the police force and 50,000 teaching jobs. 33% of the vacancies will be reserved for women, while an additional 10% reservation has been earmarked for Agni Veers. The government also proposed a 20% additional hike in DNS allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. A massive fire broke out at a coaching center operating

0: above a shop in Lucknow's Alexandria, triggering panic among students. Some people got injured and have been admitted to the hospitals. Number of casualties are not yet confirmed. Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Brijesh Pathak, reached the spot and is monitoring the rescue and relief work being conducted by local administration, police and SDRF teams. The blaze reportedly erupted inside the institute building and spread rapidly, trapping people inside. Fire brigade teams, police personnel and district administration officials rushed to the spot and launched rescue and evacuation efforts. The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting being chaired by National Security Advisor Ajit Doval brings together security chiefs from the BRICS 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and UAE. The gathering takes place as India holds the BRICS chairship for the fourth time in 2026. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met his Mongolian counterpart, Baksetseg Bakmung, in Ulaanbaatar. In a social media post, Dr. Jayashankar said that the discussions reflected the warmth, strength and promise of the India-Mongolia strategic partnership. The two leaders reviewed the progress in bilateral cooperation in development projects, capacity building, culture, education, security and multilateral fora. During the meeting, both the sides also talked about opportunities in mining, clean energy and agri-processing. In the second leg of his visit, Mr. Jayashankar will go to South Korea. During the visit, the minister will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote address at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. The Aadhaar app has crossed over 31 million downloads since it was launched in January this year. The Ministry of Electronics and Information Technology said that the growing adoption reflects people's confidence in the app for bringing services at their fingertips. UK Prime Minister Keir Starmer has resigned from the post as well as the leader of the Labour Party, ending his tenure at the Downing Street amid growing internal pressure from the party. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. In another clash, France will lock horns with Iraq in the Philadelphia at 2:30 a.m. later tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बे दिवस सत्तावार मुलाकात मंगोलिया पहुंचा। कायदा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाले जणाव्युं के सरकार तमाम नागरिकों माटे न्याय ने वधु सुलभ अने सरल बनाववा प्रतिबद्ध। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश बाबतों की संसदीय स्थायी समिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिवस की मुलाकातें। भारत आज से नवी दिल्ली में 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक का आयोजन करते। कतार में मुख्य कुदरती गैस निकास कारखाने में विस्फोट था, 54 लोग घायल जारे 18 अन्य गुम। अमेरिका ईरानी अधिकारियों वच्चे स्विट्जरलैंड में वाटाघाटों में प्रथम राउंड पूर्ण थया बाद क्रूड ऑयल में भाव बिगड़ा। वडोदरा जिले में 30 गांवों में पसार थता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मार्ग माल परिवहन क्षेत्र अभूतपूर्व सीमा चिन्हित मालगाड़ी समर्पित ट्रैक और ट्रक ऑन ट्रेन सेवा ने कारण महसाणा की दूध सागर डेरी से दिल्ली सुधी परिवहन समय में 60% घटाड़ो थयो। कच्छ जिले में 9 तालुकाओं में कुल 30 दबाण दूर कर 22,485 चौरस मीटर सरकारी जमीन दबाण मुक्त करवामां आवी जेनी अंदाजित किंमत 1,67,00,000 रूपये जेटली। दूर करेल दबाणों में 11 धार्मिक 17 वाणिज्यिक अने 2 रहेणाक प्रकार समावेश। कच्छ म्यूजियम की अनोखी पहल अंतर्गत इतिहास और संस्कृति साथ स्वास्थ्य ने संगम 11 विशेष पोस्टर्स द्वारा समझाया योग न अमूल्य सूत्रों। आगामी 28 जून में योजनारी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ने सफल बनावा जिला टास्क फोर्स इम्यूनाइजेशन समिति की बैठक आज जिला विकास अधिकारी उत्सव गौतम अध्यक्ष स्थाने योजाई। चौमा की ऋतु नजीक है तरह मच्छर से थता मलेरिया डेंगू जेवा रोग ने फैलाता अटकवा जिला पंचायत आरोग्य शाखा द्वारा जागृत बनवा अनुरोध। पानी संग्रह में तमाम पात्रों हवाचुस्त टाँकी ने राखवा पानी में भराव न थवा देवा और मच्छर उपद्रव स्थानों ने नियंत्रित करने अनुरोध करायो। દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે ભારે વરસાદનો યલો એલર્ટ વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના 29 તાલુકામાં આજે વરસાદના અહેવાલ. આજે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદની શક્યતા. હવે પછીના મુખ્ય સમાચાર સાંજે 7:05 અપાશે.
2: Mm-hmm.

मित्रों आप सुनी रहे छो गुल मोहर कार्यक्रम में हम सांभ लता मंगेशकर स्वर में कुदरत फिल्म आ गीत।

0: अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध मछीमारी करते दिखाए तो तुरंत 1093 पर कॉल करिए मरीन पुलिस में जाकर हवामान समझी बने सुरक्षित के बजाय आपकी सजगता हमें तकेदारी आपके घर में सुरक्षा ही खातरी गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में मित्रों हवे संभळीए मौलिक अरविंद दवेना स्वर में केटलाक लोकगीतों।

0: नमस्ते, यह आकाशवाणी आहे सिंधी खबरों सागर मां दीपा गुरनानी अवळी अहम खबरों। ओलह बंगाल में भाजपा सरकार पंजो पहरो मुकम्मल बजट पेश कयो। सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा विकास ए रोजगार के ध्यान में रखोस कंदे महिलाओं वास्ते केतरी ने योजनाओं की पढ़ाई कई। नई दिल्ली में अंबिक ब्रिक्स राष्ट्र सलामती सलाहकार की बैठक शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करी। भारत रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे के 631 किलोमीटर के रस्ते के ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच की मंजूरी दिनी है। गढ़वा सहकारिता मंत्री अमित शाह सुबह राष्ट्रीय जिले सहकारी मार्केटिंग संघ के नीलामी पोर्टल का मुहूर्त कद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में थे एक हैबतनाक आगजनी वाले हादसे वाक्य में 14 शागिर्द की मौत जो वख बनया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक जाहिर किया है। खबरों तफसील वार बुदना ओलह बंगाल में भाजपा सरकार 2026-27 के लिए पहले पहरियों मुकम्मल बजट पेश करो। रोजगार और आवामी कल्याण के अहदे देंगे। मुख्तलिफ विभागों में एक लग खाली अहदे देंगे मुकरने की पढ़ाई कर रही है। माननीय मंत्री स्वप्न दास गुप्ता बजट पेश करने बुधाए तो नौकरी में 33 सैकड़ों जायू और 3 जिला महफूज रहन। अग्नि वरण जिला जरूरत मुताबिक 2 सैकड़ों महफूजगी रखी गई है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों ए एमवीएम कर्मचारियों जो माहिने एजाजी नजरानों 2000 रुपया बढ़ाया गया है। एक रिपोर्टर।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रूपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रूपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन 5,000 रूपए बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रूपए की वृद्धि की गयी है। चंडीपन राजगुप्त के साथ पश्चिम महार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सलामती सलाहकार की 16वीं बैठक का अब राष्ट्रीय सलामती सलाहकार अजीत डोभाल अज नई दिल्ली में ईरान की आलातरीन राष्ट्रीय सलामती काउंसिल SNSC के रक्षा मामले के उप सेक्रेटरी गादे निजामीपुर से मुलाकात कई। विदेश वजरात बुधा तो मनी पखन ओलह एशिया के मौजूदा सूरत हाल जो जायजो वरतो। उन्होंने ब्रिक्स मंच के तहत सहकार ए भारत ईरान आपसी लागावन के भी चर्चा कई। इन्हें पखन भारत इथोपिया रणनीतिक बानेबाजी वाले के वधेरे है सहकार के नामांकित सलामसियत करे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सलामती सलाहकार NSAG बैठक हिन्न वक्त जारी है। इन नियम वाले इन बैठक की सरबराही राष्ट्रीय सलामती सलाहकार अजीत डोभाल करे रहे है। इन बैठक में नगर के 11 मेंबर मुल्क जा सलामती वगैरह इन्हें शिरकत करे रहे हैं। इन्हें मुल्क में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और मुत्तहद अरब अमीरात शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज उलानबातर में मंगोलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर चयता गालबोल ने भारत मंगोलिया रणनीतिक बानेबाजी मजबूती और इम्कानों पर गालबोल की गई। इन्हें अगवानी तरक्की योजनाओं, सड़क निर्माण, सकाफत पहले में सलामती ए वन रखी मंचन में बहनी सरकार के तरक्की जो जायजो वरतो। भारत रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे के 631 किलोमीटर के रस्ते पे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच की मंजूरी दिनी है। इनमें से सलामती ए कम करने वाली सग बेहतर बन जाएगी। रेलवे वजरात जाने तो इन योजना में ओबरी सहरी रेलवे के 6 सेक्शन शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय जरूरी सहकारी मार्केटिंग संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभ मुहूर्त कलो। पोर्टल की शुरुआत नीलामी अमल में शफाफत, कार्यकर्दगी ए बेहतरीन संचालन के मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। ही खबरों तहां आकाशवाणी तहां बुद्धि रहा हो ही खबरों तहां असंदे यूट्यूब चैनल एनएस गुजरात पे बुद्धि सको था बुद्धि का खबरों के लिए तहां असंदे वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सको था।

0: देखा है तो निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: नितिन जी, प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट, प्रधानमंत्री ने लेबर पार्टी के नेता जी और पर बना इस्तीफा देने जी पर दायर किया है। पार्टी के अंदर वन दबाव विच में उन डाउनिंग स्ट्रीट में पैंजो कार्यकाल मुकम्मल कर इस्तीफा जो बयान देने का अमल रिटायरमेंट पैंजे जाल से गुड पेन डाउनिंग स्ट्रीट का हमारे मित्र जिते अवाम संदेश जो जोश से स्वागत कर इन साल जनवरी महीने में आधार ऐप शुरू थे बैद टे करोड़ दो लख का मानू इन डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना तकनीकी वजरा जाने वाले थे इन ऐप के वजन में इस्तेमाल से पता लगे तो शेवाओं के लाभ तुरंत वन में इन मानन जो भरोसो है। फिफा विश्व कप 2026 में मिस्र अज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड के 10 विकेटों शिकस्त गई इन विश्व कप में पैंजे पहले सोभ दर्ज कई इन सोभ से मिस्र ग्रुप सी में अगले स्थान पर पहुंचो है। अब ग्रुप जे में अर्जेंटीना जो मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया से यहां मैच रात को 10:30 बजे का शुरू थी। सेंसेक्स अज 291 पॉइंटों की वाद दर्ज कदे 77,094 ते बंद थो होदा निफ्टी 90 पॉइंट वधी 24,103 पहुंचो। अब निक ने अगस्त में मेघालय में जबरदस्त बरसात जो रेड अलर्ट जारी किया है। आखिर में अहम खबरों पर नजर विझना से ओला बंगाल में भाजपा सरकार पैंजो पहरियों मुकम्मल बजट पेश कयो। सामाजिक कल्याण बुनियादी ढांचा विकास ए रोजगार के ध्यान में कोस कंदे महिलाओं वास्ते केतरी योजनाओं की पधराई कई। नई दिल्ली में अभी तक ब्रिक्स राष्ट्र सलामती सलाहकार की बैठक शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात कई। भारत रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे के 631 किलोमीटर के रास्ते पे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच की मंजूरी मिली है। गरुड़ सहकारिता मंत्री अमित शाह सुभाणे राष्ट्र जरिए सहकारी मार्केटिंग संघ के नीलामी पोर्टल जो मुहर रखेंगे। आकाशवाणी के सिंधी समाचार जो इो अंक समाप्त।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युववाणी। मैं हूँ आपके साथी कीर्ति वैष्णव। दोस्तों, हमारे आसपास की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? मोबाइल बदल रहे हैं, फैशन बदल रहा है, हमारे बात करने का तरीका बदल रहा है और यहाँ तक कि हमारा म्यूजिक भी हर रोज बदल रहा है। आज की इस दुनिया में हर रोज न जाने कितने नए सिंगर्स आते हैं। कुछ दिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लोग उन्हें और उनके गानों को भूल जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक जमाने के लिए नहीं गाते। वे जब तक इस दुनिया में रहते हैं, खुद संगीत की एक ऐसी पहचान बन जाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम संगीत जगत के एक ऐसे ही अनमोल सितारे को समर्पित है जो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनकी आवाज और जिनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। हम सब मिलकर आज पूरे सम्मान के साथ याद कर रहे हैं करोड़ों दिलों पर राज करने वाली हमारी चहेती आशा भोसले जी को। दोस्तों, जब आशा जी इस दुनिया से गईं, तो सिर्फ एक बड़ी सिंगर ही नहीं गईं, बल्कि संगीत का एक ऐसा सुंदर और जोश से भरा चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसने 80 सालों से भी ज्यादा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झूमना, नाचना और हंसना सिखाया था। आम तौर पर जब आज की युवा पीढ़ी किसी ऐसे कलाकार के बारे में सुनती है जिसने 1945 में अपना करियर शुरू किया हो, तो उन्हें लगता है कि यह उनके दादा दादी के जमाने की बात है। युवाओं को लगता है कि पुराने कलाकारों की सोच या उनका स्टाइल आज के इस इंटरनेट और डिजिटल युग के लोगों से कैसे मैच कर सका है। आज के युवाओं की अपनी एक अलग दुनिया है, अपने अलग रिमिक्स हैं, रैप म्यूजिक है और अपनी अलग पसंद है। लेकिन आशा भोसले पूरे इतिहास में एक ऐसा नाम थी जिन्होंने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच इस फासले को हमेशा के लिए मिटा दिया था। ऐसे ही एक गीत ने दशकों से श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। आइए सुनते हैं मेरा पसंदीदा फिल्म हम दोनों का सदाबहार गीत अभी न जाओ छोड़कर।
1: अभी

दोस्तों, चाहे 1950 का वह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर रहा हो जब लोग ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, चाहे 70 का वह दौर रहा हो जब इलेक्ट्रिक गिटार और रॉक एंड रोल ने फिल्मों में कदम रखा था, या 19 का वह दौर जब कैसेट और म्यूजिक वीडियो का चलन शुरू हुआ था, आज का यह नया दौर हो जहां म्यूजिक सीधे हमारे फोन और एप्स पर आ चुका है। आशा भोसले जी हर एक दौर में उतनी ही नई और फ्रेश लगती है।

की आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक ऐसा जोश था जो उम्र को नहीं मानता था। जब वह गाती थी तो सुनने वाले को कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई बहुत बुजुर्ग कलाकार गा रहा हो, बल्कि ऐसा लगता था कि आपकी ही उम्र का कोई बहुत करीबी दोस्त अपनी खुशियाँ और अपने नखरे आपके सामने रख रहा हो। उनकी गायकी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसमें कोई बनावटीपन या दिखावा नहीं था। वह बहुत ही सहज और आसान तरीके से गाती थी। यही वजह है कि आज के युवा भी जब उनके पुराने गानों को इंटरनेट या इंस्टाग्राम रील्स पर सुनते हैं तो उन्हें वह गाने पुराने नहीं लगते, बल्कि उनमें आज के युवाओं को एक अलग तरह का स्वैग और स्टाइल नजर आता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उनके इसी शानदार और संघर्षों से भरे सफर की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों को याद करेंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल उनके लिए आदर से भर जाएगा। हम यह जानेंगे कि एक साधारण सी लड़की ने कैसे अपने लगन और मेहनत के बल पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पहचान बनाई। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज की हमारी ये जो युवा पीढ़ी है, वह आशा जी की लाइफ से अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर और कामयाब बनाने के लिए क्या क्या सबक सीख सकती है। दोस्तों, किसी भी इंसान की महानता इस बात से नहीं देखी जाती कि उसे कामयाबी कितनी आसानी से मिल गई। महानता इस बात से देखी जाती है कि उसने मुश्किल रास्तों पर चलकर खुद को कैसे साबित किया। अगर हम इस तरह देखें तो आशा भोसले जी की पूरी जिंदगी कड़े संघर्ष और कभी भी हार न मानने की एक बहुत बड़ी कहानी है। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में करियर शुरू किया था, तब का माहौल आज जैसा बिल्कुल नहीं था। आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, टीवी शोज हैं, यूट्यूब है, जहां आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। लेकिन उस जमाने में गायकी की दुनिया पर कुछ बड़े नामों का कब्जा था, और उनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय नाम था वह कोई और नहीं बल्कि अपनी सभी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी का था। अब जरा हमारे आज के युवाओं के नजरिए से इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। एक युवा लड़की जो खुद म्यूजिक की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन उसके ठीक सामने उसकी ही अपनी बड़ी बहन संगीत के आसमान का सबसे बड़ा सूरज बनकर खड़ी हो। ऐसे माहौल में किसी भी नए सिंगर के लिए अपनी एक छोटी सी जगह बनाना भी लगभग नामुमकिन जैसा काम था। उस जमाने में लता मंगेशकर जी की आवाज को सादगी और एक आदर्श भारतीय नारी की आवाज माना जाता था। फिल्मों के जो बड़े डायरेक्टर्स होते थे, जो मुख्य हीरोइनें होती थी, उनके सभी गानों के लिए पहली पसंद सिर्फ लता जी ही हुआ करती थी। ऐसे बेहद कठिन समय में युवा आशा जी के सामने दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वह अपनी बड़ी बहन की स्टाइल की नकल करे, उन्हीं की तरह सीधे साधे गाने गाए और शायद पूरी जिंदगी उनकी परछाई बनकर रह जाए, क्योंकि दुनिया कभी भी ओरिजिनल के होते हुए नकल को पसंद नहीं करती। दूसरा रास्ता यह था कि वे उस सेफ रास्ते को छोड़ दें और अपने लिए एक बिल्कुल नया, अनजाना और चुनौतीपूर्ण रास्ता चुनें। आशा जी ने बिना डरे उस दूसरे और मुश्किल रास्ते को चुना। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह पक्की जिद ठान ली थी कि वे किसी की नकल या परछाई बनकर नहीं जिएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिन मेहनत क्यों न करनी पड़े। वे दुनिया में अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। शुरुआत में उन्हें फिल्मों की मुख्य हीरोइनों के गाने बिल्कुल नहीं मिलते थे। उन्हें वो गाने दिए जाते थे जिन्हें इंडस्ट्री के दूसरे बड़े सिंगर्स गाने से मना कर देते थे, या जो गाने थोड़े अलग किस्म के माने जाते थे। उस दौर के सिनेमा में जो डांसर्स होती थी या विलन के साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस होती थी, उन पर फिल्माए जाने वाले तेज तर्रार, नटखट, थोड़े चुलबुले और डांस वाले गाने ही आशा जी के हिस्से में आते थे। लेकिन आशा जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने कभी किसी काम को छोटे नहीं समझा। उन्होंने हर एक गाने को एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे साधे गाने पर उनकी बड़ी बहन का राज है, तो वे इन तेज और मुश्किल गानों में अपनी ऐसी पहचान बनाएंगी कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, यही से हिंदी सिनेमा में एक ऐसी बिल्कुल नई गायिका की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर फिल्मों का पूरा अंदाज ही बदल कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म किस्मत का बेहद लोकप्रिय गीत आओ हुजूर तुमको।

दोस्तों आशा जी ने अपनी आवाज में हाव भाव यानी एक्सप्रेशंस का ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किया जो उस समय तक भारतीय संगीत में किसी ने नहीं किया था। गाने के शब्दों के बीच में हल्के से हंस देना, उदासी में आवाज को थोड़ा धीमे कर देना, गुस्से का एहसास कराना या गाने के बीच में एक छोटी सी सांस लेना, इन सब बारीकियों को उन्होंने अपनी गायकी का हिस्सा बना लिया। जब संगीत निर्देशक ओपी नैयर साहब के साथ उनकी जोड़ी बनी तो उन्होंने संगीत की दुनिया को एक नई खनक और एक नया रिदम दे दिया। आशा जी ने अपने संघर्ष के दिनों से आज के युवाओं को यह बहुत बड़ा सबक सिखाया कि अगर आपके पास अपनी कोई नई सोच है तो कोई भी आपकी चमक को रोक नहीं सकता। कंपटीशन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी ओरिजिनलिटी ही आपको सबसे आगे ले जाती है। आशा जी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी बात आज के हम जैसे युवाओं को सीखनी चाहिए वह है बदलाव से कभी न डरना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना और हमेशा कुछ नया सीखते रहना और उस इच्छा को जिंदा रखना। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने फील्ड में एक बार कामयाब हो जाता है तो वह एक ही तरह का काम बार बार करने लगता है। लोग अपने चारों तरफ एक सेफ जोन बना लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नया करने में फेल होने का खतरा है। लेकिन आशा जी ने अपने 80 सालों से भी लंबे करियर में कभी भी खुद को किसी एक दायरे में बंद होने नहीं दिया। वे हर दिन एक नए कलाकार की तरह उठती थी और कुछ नया करने के लिए तैयार रहती थी। उनके गाए हुए गानों की वैरायटी को अगर आप देखें तो आज के दौर के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैरान रह जाएं। एक तरफ जहां उन्होंने पिया तू अब तो आजा और ओ हसीना जुल्फों वाली जैसे बेहद तेज जोशीले और डांस वाले गाने गाए तो दूसरी तरफ उन्होंने फिल्म उमराव जान में ऐसी गंभीर और दिल को छू लेने वाली गजलें गाई कि सुनने वाले पूरी तरह से खो गए। इस फिल्म उमराव जान से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जो संगीत की दुनिया में आज भी बहुत आदर के साथ सुनाया जाता है। जब संगीतकार खय्यम साहब ने इस फिल्म के गानों के लिए आशा जी का नाम फाइनल किया था तो उस समय फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि जो सिंगर हमेशा तेज चुलबुले और वेस्टर्न स्टाइल के गाने गाती हैं, वे गजल की इतनी गहरी बारीकियों को कैसे गा पाएंगी। लेकिन खय्याम साहब को आशा जी की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने आशा जी से सिर्फ एक छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा, आशा जी आपको अपनी गायकी का कोई स्टाइल नहीं बदलना है, बस आपको इन सभी गानों को अपने नॉर्मल सुर से थोड़ा नीचे के सुर में यानी गहराई के साथ गाना है। आशा जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कई महीनों तक उर्दू के सही उच्चारण, लहजे और गजल के ठहराव पर कड़ी मेहनत की। रोज घंटों अकेले बैठकर रियाज किया। और दोस्तों जब वह फिल्म आई तो दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती के जैसे गानों ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के गानों के लिए आशा जी को नेशनल

पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह पूरी दुनिया के सामने इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि आशा जी सिर्फ एक तरह के गाने नहीं गाती, बल्कि वे संगीत के हर रंग को पूरी खूबसूरती के साथ गाना जानती हैं। इसी को याद करते हुए आइए सुनते हैं फिल्म उमराव जान का गीत दिल चीज क्या है।

दोस्तों, इसके बाद का जो दौर आया, मैं था आईडी बर्मन, यानी हम सबके प्यारे पंचम दा के साथ। पंचम दा खुद म्यूजिक के नए नए और अतरंगी प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे। वे कभी शीशे के खाली गिलासों को आपस में टकराया करते धुन बनाने के लिए, तो कभी कुछ और नया करते। और आशा जी उनकी इस नई सोच को अपनी आवाज देने के लिए सबसे परफेक्ट कलाकार थी। फिल्म इजाजत का वह मशहूर गाना तो हम सबने सुना ही होगा, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। दोस्तों, यह कोई आम फिल्मी गाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह तो महान लेखक गुलजार साहब की लिखी हुई एक कविता थी, जिसमें कोई पारंपरिक काल या तुकबंदी नहीं थी। जब पंचम दा ने इसकी धुन बनाई तो इसे सही तरीके से गाना किसी भी सिंगर के लिए बेहद मुश्किल काम था, लेकिन आशा जी ने अपनी आवाज के ठहराव और गहराई से इस गाने को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। वह वास्तव में एक बेहद निडर और साहसी कलाकार थी, जो मुश्किल काम के सामने कभी घबराती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे पूरा करती थी।

ये बात थी 1990 के दशक की। ये वही समय था जब भारत में टीवी का नया नया क्रेज बढ़ रहा था। एमटीवी और चैनल वी युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हो रहे थे और पूरे देश में पॉप म्यूजिक यानी फिल्मों से अलग स्वतंत्र गानों का एक बिल्कुल नया दौर शुरू

उन्होंने उस समय के सबसे मॉडर्न म्यूजिशियन लेस्ली लुइस के साथ हाथ मिलाया और एक बहुत ही शानदार पॉप एल्बम निकाली जिसका नाम था जानम समझा करो। उस म्यूजिक वीडियो में उनका अंदाज, उनका स्टाइल और उनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने उस दौर के 20-22 साल के नए सिंगर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी पुरानी धुनों को जैसे ओ मेरे सोना रे को नए जमाने के रिमिक्स के रूप में भी पेश किया, लेकिन उन्होंने इस बात का हमेशा पूरा ख्याल रखा कि गानों की मूल आत्मा और उनकी मर्यादा को भी कोई ठेस ना पहुंचे। वे बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पुरानी चीजें और उनकी खूबसूरती नई पीढ़ी के सामने कैसे उनके अंदाज में पूरे सम्मान के साथ परोसी जा सकती है। यही कारण था कि आशा जी का नाम और उनका सम्मान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वे पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। वे दुनिया के उन बहुत कम भारतीय कलाकारों में से थी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पश्चिमी संगीत के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बहुत ही सफल काम किए थे। उन्होंने मशहूर ब्रिटिश सिंगर बॉय जॉर्ज के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गाना रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्लासिकल म्यूजिक ग्रुप कोनर्स क्वार्टेट के साथ मिलकर उन्होंने एक पूरा एल्बम तैयार किया था। इस एल्बम के लिए उन्हें दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक अवार्ड ग्रैमी अवार्ड में भी नॉमिनेशन मिला था। यहाँ तक कि ब्रिटेन के एक बहुत ही मशहूर रॉक बैंड ने तो आशा जी के सम्मान में एक पूरा गाना ही लिख दिया था जिसका नाम था ब्रिमफुल ऑफ आशा। यह गाना उस समय ब्रिटेन के म्यूजिक चार्ट्स में नंबर वन पोजीशन पर पहुंच गया था। संगीत के प्रति उनके इसी अनोखे योगदान और रिकॉर्ड को देखते हुए साल 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने 20 से भी ज्यादा भाषाओं में 11,000 से भी ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी थी। भारत सरकार ने भी उन्हें देश के बहुत बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। लेकिन दोस्तों, इन सारे रिकॉर्ड और पुरस्कारों से भी बड़ा अगर कोई रिकॉर्ड था तो वह था दुनिया भर के करोड़ों श्रोताओं के दिलों में उनके लिए बसा हुआ सच्चा प्यार, जो आज भी वैसा ही है। आशा भोसले जी के व्यक्तित्व सिर्फ उनकी बेहतरीन गायकी तक ही सीमित नहीं था, वे वास्तव में एक ऐसी हिम्मत वाली और जिंदादिल महिला थी जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई बड़े दुखों और उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने अपने जीवन के किसी भी निजी दुख को कभी अपनी आवाज की मिठास पर या अपने चेहरे की मुस्कान पर हावी नहीं होने दिया। वे जब भी कैमरे के सामने आती थी उनकी एनर्जी पूरे माहौल को खुशियों से भर देती थी। वे संगीत की जितनी बड़ी उस्ताद थी उतनी ही लाजवाब कुक यानी रसोईया भी थी। उन्होंने अलग अलग तरह का खाना बनाने और लोगों को बहुत ही प्यार के साथ खिलाने का बेहद शौक था। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स राज कपूर साहब से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक उनके हाथ के बने खाने के बहुत बड़े दीवाने।

रोक नहीं सकती। अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी समय तक मैं सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए नए बच्चों से, नए टैलेंट से और आज की इस डिजिटल पीढ़ी से लगातार जुड़ी रही। वे कभी भी पुरानी यादों में खोकर उदास नहीं बैठी, बल्कि वे हमेशा आज के दिन को पूरी जिंदा दिली और पॉजिटिविटी के साथ जीती थी। वे जब भी युवाओं से मिलती थी उन्हें यही सिखाती थी कि हमेशा हंसते रहो और कुछ नया सीखते रहो। आज आशा जी भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वे अपने पीछे गानों और यादों का एक ऐसा कभी न खत्म होने वाला खजाना छोड़ गई है जो हमेशा लोगों के दिलों को सुकून देता रहेगा। आज की हमारी इस युवा पीढ़ी के लिए उनकी पूरी लाइफ स्टोरी एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। वे हमें सिखा गई कि लाइफ में कॉम्पिटिशन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी और अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा रखते हैं तो आप अपनी जगह खुद ब खुद बना लेते हैं। वे हमें सिखा गई कि वक्त के साथ खुद को बदलना और नए जमाने को अपनाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, वे हमें यह विश्वास दिला गई कि उम्र केवल हमारे शरीर की होती है, हमारे मन की नहीं। जब तक आपके दिल में कुछ नया करने की चाह है, जज्बा जिंदा है, तब तक आप हमेशा युवा हैं। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से आशा भोसले जी को हमारा श्रद्धापूर्ण नमन। आपकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी, हमें हौसला देती रहेगी और आने वाले हर नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। अब समय हो चला है आप सभी श्रोताओं से विदा लेने का। मुझे यानी कीर्ति वैष्णव को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। नमस्कार।

0: મિત્રોને આપ સાંભળી રહ્યા હતા યુવા દોસ્તો માટેનો કાર્યક્રમ યુવાણી, આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો. પ્રસ્તુત છે કેટલાક
1: સમાચાર કે સાથ મેં કૃષ્ણભાઈ. शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं. मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय देवा पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वागचौड़े, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया. उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई. अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए. उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया. संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकलकर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं. दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है,

मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

0: करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सी तेसेग बटमुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव वादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। वैश्विक सुरक्षा पड़कारों बदलाता स्वरूप और नवी टेक्नोलॉजी की भूमिका अंगे चर्चा। कायदा और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाले जणाव्यु कि सरकार तमाम नागरिकों न्याय ने वधु सुलभ और सरल बनावा माटे प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिवसीय सत्तावार मुलाकात मंगोलिया पहुंचा। नमोलक्ष्मी योजना थकी छेल्ला 1 वर्ष में वर्गखंडों में 80% हाजरी आपनारी विद्यार्थिनियों की संख्या 1,71,988 2,96,495 थी। राज्य में पोलिस जेल और वन विभाग सहित वर्ग 3 सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरो ने 20% अनामत और व्यय मर्यादा में छूटछाट आपवानी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जाहरात। गुजरात एसटी निगम की कैशलेस टिकटिंग सेवा नो व्याप वध्यो। QR कोड थकी बसों में मुसाफरी थी 1 वर्ष में निगम ने 112 करोड़ रूपया की वधु की आवक थी। कच्छ में आगामी 28 जून योजना राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान अंतर्गत 3 लाख बाळकों ने रसी में 2 टीपा पीवड़ा वहीवटी तंत्र संपूर्ण रीते सज्ज। कच्छ जिला में दबाण हटा झूंबेश तेज कराई। 9 तालुकाओं में 30 जेटा गैरकायदे दबाण हटा 1,67,00,000 की किमत की सरकारी जमीन खुली करावाई। अंजार में मोहर्रम पर्व की शांतिपूर्ण उजवणी माटे शांति समिति की बैठक योजाई। आगामी 26 जूने सर्वधर्म मानस मोहब्बत मजलिस आयोजन कराशे। ड्रग्स सामे की झूंबेश में भूज शहर बी डिविजन और मानकुवा पुलिस 2 अलग अलग दरोड़ा पाड़ी 2 शख्सों ने गांजा जत्था साथ झड़पी लीधा। मुख्य समाचार पूरा थया।

0: बहुत ठीक है ना, सब ठीक है ना, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही मैं दवा बिठाओ दो सर?
1: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी सुनते हो अब ठीक है।
0: सारा घर कवा खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो वो तो भुलाएगा।
2: अगर वो चाहे
0: मैं अभी ये क्या बच्चों की जान दिखा रही हूँ, तेजी से उठिए ना प्लीज, भाग कर जाइए और शेव कीजिए।
2: अच्छा शेव कीजिए और कपड़े पहनिए।
0: क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
2: मदर मदर कुछ नहीं दादी,
0: ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप है तो दारू बनाए बनाए कहने जैसे बिल।
2: मगर आज तो छुट्टी है,
0: दादी है अपने घर लेके दो।
2: बस हो गया मौसम दादी,
0: जल्दी चलिए पन्नी साड़ी और मेकअप कीजिए।
2: और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो?
0: चलो फुर्ती से करना साफ करो, रसोई संभालो और फिर अपने आप को दुरुस्त करो।
2: ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी।
0: तुम चलते रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ
2: मैंने
0: बुशक
2: बुशक मिल गई

0: कहा नहीं, मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
1: अच्छा बेटा।
0: ये बात मेरी सुन, ये बात ऐसे

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

सुनने वालों को सभा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का और फिल्म का नाम है

0: आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गाँव जाना और उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प थी कि आपको
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिसको ये शकील था कि जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को मैं शहर पूछा मैं घूमती गया लेट गया

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुनो अगला गीत अभिजीत सपना मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नवीन श्रवण का और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो बनना प्यार की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी लाइन नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मगर मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला, तो उन्होंने प्यार किया तो बनना प्यार की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन लिखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ी चुनरिया पड़ेगा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रमय कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं जुबीन गर्ग की आवाज में। नग्न निगार है सईद कादरी, म्यूजिक है प्रीतम चक्रवर्ती का और फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

से जाने वाला स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को तब मैं मुसीम का वो होता हुआ हूँ ना बासु, और फारूक होता होता बहुत राजा राम। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या चाहते हो, तुम्हें कोई चाहिए

साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होते हैं। यही विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रथम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में बेहद शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, जहां हमारे साथी सज्जन अहमद जी बैठे हैं, जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सरदार गांधी जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान महिलाओंगे चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हुए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।

0: भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
1: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धपंग, हरिदासपुर पौड़ादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा घुनीपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सोनिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दास गुप्ता ने

0: घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और युवा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबातर में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखला से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखला की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबातर में मंगोलिया के विदेश मंत्री मुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं क्षमता निर्माण संस्कृति शिक्षा सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग के प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल तमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव नादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेजसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोविंदे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने बिग ढांचे के तहत

के क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN बट्टे और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय समाप्त किया, अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टारमर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टारमर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।

0: until the contest is complete.
1: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस याफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन फ्रीदा अल कादी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केवरा ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिला और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में इंग्लैंड और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक

0: विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर

सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे को शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के लेबर पार्टी ने असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम चंद्र के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर।

0: 15 throughout the Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of the kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi said India is the fastest growing economy and it is emerging as a reliable global power. He said several initiatives have been launched in the last 12 years with the motto of Nation First. Mr. Modi said this while addressing an event in New Delhi today.
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है. भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है.
0: We now take you live to listen to the Prime Minister's address.
1: वो व्यक्ति ठीक होता ऐसा नहीं है. जब एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है तो पूरा परिवार ठीक हो जाता है. ऐसे ही जब घर का कोई एक बेटा बेटी कुछ एक्टिव करके आता है तो जब वो व्यक्ति एक्टिव करके नहीं आता तो पूरा परिवार एक्टिवमेंट से बढ़ जाता है, विश्वास बदल जाता है. ऐसे ही जब कोई गरीबी से बाहर आता है तो संपूर्ण समाज का फायदा होता है, देश का फायदा होता है.
0: The two-day BRICS National Security Advisors meeting began in New Delhi today. The meeting being chaired by National Security Advisor Ajit Doval brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include

0: સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. આઈસીએઆર પોઝિટિવ ભુજના વડા ડોક્ટર મનીષ કામતે આ અંગે આકાશવાણી સમાચાર સાથે વાતચીત કરી હતી.
1: આજ હમ વાત કરેંગે ખેત બચાવ અભિયાન કી, જો કિસાનોં કી મુશ્કિલ ખેતી ઓર ભવિષ્ય કો સુરક્ષિત બનાને કી દિશા મેં ભારત સરકાર કા એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ હૈ, એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ હૈ. કિસાન સાથીઓ, ખેતી કી શરૂઆત સ્વસ્થ મિટ્ટી સે હોતી હૈ, લેકિન આજ લગાતાર અસંતુલિત ઉર્વરકોં કે ઉપયોગ સે ઘટતી જૈવિક પદાર્થોં और बदलते जलवायु परिवेश के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है. और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एवं आईसीएआर ने देश के 100 जिलों को चिन्हित किया जहाँ पे यूरिया एवं डीएपी की उपयोग हम अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कर रहे हैं. कच्छ में 1900 जिलों में से शामिल है जहाँ हम डीएपी का उपयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं. डीएपी एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक या बिना मिट्टी परीक्षण के इसका प्रयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है. इससे सल्फर, जिंक, पोटाश और एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है. परिणाम स्वरूप आपके उत्पादन लागत कम हो जाती है, किसान की जो लागत है वो बढ़ जाती है. उर्वरकों के उपयोग से उर्वरकों की दक्षता भी कम हो जाती है और लंबे समय के अंतर्गत आपके खेत और खेत की जो मिट्टी है उसकी स्वास्थ्य खराब होने लगता है. कच्छ की परिस्थितियाँ इस समस्या को और गंभीर बनाती है, क्योंकि हमारा जिला पूर्ण रूप से शुष्क क्षेत्र में आता है जहाँ औसत वार्षिक जो वर्षा हमारी वो 250 से 350 मिलीमीटर होती है. पानी की कमी, कम जैविक कार्बन और कई क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी के कारण हमें मिट्टी और उर्वरकों का वैज्ञानिक प्रबंधन अपना अत्यंत आवश्यक हो जाता है. यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमको हमारी माटी की सुरक्षा कैसे करनी है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है. इसी उद्देश्य से खेत बचाव अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विभाग एवं समस्त आईसीआर विभाग किसानों को संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं. यह अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलेगा. जैसा मैंने पहले बताया था आपको, इस अभियान के अंतर्गत हमारी प्रमुख सलाह मिट्टी की जांच करवाना, करवाकर मिट्टी का सोयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से के द्वारा से ही आपको उर्वरकों का उपयोग अपने खेत में करना है. डीएपी का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करें और बहुत अच्छा होगा अगर आप वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार अगर आप करते हैं तो अपने खेत के अंदर लागत भी कम लगेगी, मात्रा भी कम लगेगी और आपका जो उपज है और खेत की जो मिट्टी है उसके लिए स्वास्थ्य संरक्षित रहेगा. गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एवं जैव उर्वरकों का उपयोग अधिक से अधिक करें. अगर ये करेंगे तो लंबे समय के बाद उपरांत अगर आप देखते हैं आपका खेत की जो मिट्टी है, खेत का स्वास्थ्य वो अच्छा हो जाएगा और जिसकी वजह से आपकी लागत भी कम हो जाएगी. जहाँ आवश्यक हो एनपीके कॉम्प्लेक्स, सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा अन्य संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें. लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि इनका जब भी उपयोग करते हैं उसकी मात्रा हमेशा वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई हुई मात्रा के अनुसार ही होनी चाहिए, ताकि हमारा खेत और हमारा पर्यावरण, हमारे मौजूदा वातावरण हमेशा बना रहे. वर्षा जल का संरक्षण करें, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाएं, फसल विविधीकरण और बागवानी को अपनाएं, ताकि हम अपनी नदियों को, अपने वातावरण को, अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित रख सके. किसान भाइयों और बहनों, याद रखिए अधिक डीएपी या अधिक उर्वरकों का उपयोग आपके अधिक उत्पादन गारंटी नहीं है. सही उर्वरक, सही मात्रा, सही समय, सही विधि, यही सफल खेती की पहचान है. यदि हम संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और उर्वरकों की लागत भी कम होगी, आपका उत्पादन स्थिर होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी, उनके लिए भी आपके जो खेत है, संसाधन है, वो उनको सुरक्षित और लाभकारी रूप में मिलेंगे. आइए हम सब मिलकर संकल्प करें, स्वस्थ मिट्टी, संतुलित उर्वरक, जल संरक्षण अपनाकर हम कच्छ की खेती को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बना सकें.

ऑर्डर फ्री चुकानी करवानी रहेशे। ऑर्डर पोतानी अर्जीनी स्थिति पोर्टल पर लॉग इन करीने जाणी शके छे अने सेवा पूर्ण थया बाद प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड पण करी शकाशे। वधु माहिती माटे नागरिको टोल फ्री नंबर 1800-233-5500 पर संपर्क करी शके छे। समाचार वर्तुळ माटे टॉपिक समा भूज।

आदि पूर्णिया ड्रग्स न दूषण सामने जागृति कार्यक्रम योजायो। लखपत तालुका न अमिया गाम ग्रामजनों ने पशुपालकों ने गोबरधन गैस प्लांट अंगे विस्तृत माहिती ने मार्गदर्शन आपवामां आव्युं। नलिया थी सामखियारी सुधी नो रेलवे ट्रेक कवच 4.0 थी सुरक्षित बनशे। कच्छ जिल्ला में 27 जून 2026 सुधी हथियारबंदी जाहिर कराई। जिला में सरेराश 15-25 किलोमीटर ने झड़पे फूकायेला वेगीला पवन ने पगले जिला ना अनेक विस्तारों में दौड़ी बंगली उड़ी। जिलाना छथी वधु उत्पादनों ने भौगोलिक संकेत एटले के जीआई टैग एनायत थता सदियों जूनी वारसागत कुशलता ने औपचारिक मान्यता मिली। कच्छनी स्वैच्छिक संस्था विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा भुजमा 100वां पुस्तक मेला 18-20 जून दरमियान आयोजन करायु। कच्छना लोक वाद्य तथा लोक कलाकारों ना जतन अने संवर्धन माटे कार्य करती कला वारसो ट्रस्ट संस्था द्वारा कच्छना लोक कलाकारों ने अपातो कला वारसो भूषण एवॉर्ड वर्ष 2026 माटे जाहिर कराया।

भाई अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में

अलीगढ़ के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। हीरो सुशांत की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। उस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने लूला शम की भूमिका निभाई थी।

फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कभी डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं

कोई शर्तियां आपकी तरह एक फौजी होता, बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मेट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में

0: आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंडलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चंद्रपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले जयपुर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेषों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अंगेश पुरी पर यह नगमा फिल्म आया।

Person to blame faulty tests of these, सन 1998 इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद देवलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो

अमित धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।

की केंद्र था अभिनेता इंग्लिश फिल्म पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान प्रस्तुति रमेश गोखले।

हम आज आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग दो मारू विहाग तबला संगीत चिरायु भोले हारमोनियम उर्मिला भावसार प्रसारण आकाशवाणी ने अहमदाबाद।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना

0: शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शेष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of